0: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फिट नला विश्वासी समक बसुगो रोसी रंगलाई याकर्की घनिष्ठ रु तब सेम लसुमुला जयमसी तथा लसो फ्याफुल्ला नमस्कार। स्पार्क माइ फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसिगो अङ्क 18 रे रङ निदा स्वागत मुला गा वियोग तामाङ रो याङ याकर्की तब सेम मुसिमुला रो सेमला गी याङला याकर्की वा लाना घनिष्ठ रोगदि हिम्बा रो सेमुला गी रो से स्यान्दो देन पुरान सम्बन्ध सुसुगो उपदेशक 4 अध्याय 9 याकर्की भन्दा गही जब हिम्बा टिक दबिसम रङ लगेला जब फल याङला थाइमा याङ द थेरङ मी तोला जो याङ रङला सेमला ताम खुबरी हमला याङला रुना का तोला याङ द थेरङ मी तोला जोदा याङ रङला रङ नङबा नङला सदस्य साझा लबरी हमला तसै थे मी यंगसी विश्वास लबरी हमसिला थे ने परमेश्वर दिन बांग सम्बन्ध ताबा रंगदोला युहन्ना 15 अध्याय र रोला लागिरी रंगला ज्ञान नोन पिनम भन्द ग्रेन माया अर्गु तिगै नोन आरे परमेश्वर से रंगदा सुरंग रो सोबरे सेम लसु मुला जोसे रंगदा छोटे लानन मायला मुला कि जब थेनी गदेदा नुआम मुला कि रंगदा थेनी गदेला आवश्यकता मुला थेनी गदेसी बेनन ताम खासी रंगला छमरी मुला ताकि थेनी गदे रंगला आवश्यकदारी रंगलान छमरी थोरै छमरी थेरी ताबरे हमला युहन्ना 15 अध्याय 14 चुरे एनी गदे से नै कुलबताम न्यान्सी बिसम एनी गदे गाला रु हिन्ना रोसेचु विशेष रोदा रंगला लुइरी बारेरी तच्छ रोसेचु सेवारी आवश्यक मुला केचु रो छमला सम्बन्ध से रंगदा थेरङबा नाङसी थेरङबा ग्याम्री दोबसेला अरे जहाँ थे रो रंगला लागरी महत्वपूर्ण तामुला जहाँ रंग थे मिदेन दुई बिताबल बारी चोत्ती लानन मग्न मुसुलगी चु रंगला लुइदे रोदेन दुई बिताबल सुगो थेन्दे रोसे रंगदा पिन्सुबा बलवार जिन्न लाभा भन्दा यिन प्राथमिकता दुमुला व्यवस्था 4 अध्याय 24 तिक्द विषम परम प्रभु एनी गदेला रो भस्म सोसेला मेदेन जहाँ लसेला रो मुसुला जब याङ मूर्ति पूजाला बारेरी सोचबला तस याङ से पूजा लाबरी डाम्बा मूर्ति गदे मध्य याकर्गी अर्को मी देनला सम्बन्ध यन हिन्बा हलाई देन भावनात्मक रूपरी चोते जोडप्ता बारे सजिलो मुवा कि याङ प्रार्थना रे दुई बिताब बारी देन रोदेन दिनलान छ्याम माइबा भन्दा थेनी गदे देन दुई बिताबल बारी लान उत्सुक तामुला रङला लुइला लागरी परमेश्वरला योजना पछ्याबल बारी माइबाला सट्टा थेनी गदेसी थे मिला वरिपरि रङला लुई सुमुला हितोपदेश 18 अध्याय 24 लालन रोगदे ताब मिला एन स्ट्रबनास ताबरी हमला तासै हाजीबाई रोगदे चाहिँ जो जो आली भन्दा नाम चिमुला यदि रङ साचिन चुरुङमा घनिष्ठ रो याङ भने सेमुला विषम चुमिदा माइबा प्रयासरी रङला दुई खेर थलापसुगो रङला अब रो देन रङला प्रभु येशु ख्रिस्ट देन घामला सम्बन्ध लिच्छ लगाव लसुगो किरम रो देनला रङला सम्बन्ध खम्बा ताबन नेन रोदा था मुला कि रङ सिचु छार रोला लागिरी रोदा थासेला आरे रोसी पक्कै नोन थे मिदा रङ घामरी बाबरी हामा तिग्द विषम रो रङदा लानन माया लसुमुला थेन्दे रङसी थे रो रुक्तबा सेमुसुला आमेन परमेश्वर से रंग निदा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिन्छुगो। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रंगला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क लसुगो। हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
2: जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर शैक्षिक सत्र 2026-27 लागि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित जापानकै अग्रणी शैक्षिक संस्था एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानमा

0: ओ मिज्यू नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार मिज्यू नमस्कार।
0: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
1: ल धन्यवाद धन्यवाद मिज्यू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मिज्यू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या।
0: खै मिज्यू म त बिहेमा आउँदिन होला।
1: ल मिज्यू मेरो बिहेमा किन नआउने नि?
0: किन आउने नि मिज्यू, धादिङमा एउटा राम्रो दौरा सुरुवाल सिलाउने।